0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये वाकया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
4: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल x@AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है चाहे वह सुधार जीएसटी फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया जो अब तक का सबसे अधिक है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है
6: डिजिटल इंडिया इज मोर अ कॉन्सेप्ट
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है बल्कि ये एक यात्रा है हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं खासकर हमारे जैसे देशों के लिए
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है

0: उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार की विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

0: తెలుగు కార్యక్రమాలు విన్నాలని ఉందా? మన తెలుగు కార్యక్రమాలు కూడా న్యూస్ ఆన్ ఏఐఆర్ యాప్ లో లభ్యమవుతుంది.
1: నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన స్వరంగా అవతరించి.
2: ആകാശവാണിയുടെ എല്ലാ മലയാളം ചാനലുകളും ന്യൂസ് ഓൺ എയർ ആപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ആകാശവാണി എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം.
1: എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി.
3: ന്യൂസ് ഓൺ എയർ പ്രോഗ്രാം ബംഗ്ലാ ഭാഷയെ এখন ভালো ভালো സംഗീത് ഖബർ আর অনেক রকম ভালো প্রোগ্রাম শুনে যাচ্ছে. আমিও শুনছি আর আপনারাও এর সাথে যোগদান করুন.

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, आप जानते ही हैं ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में आम का जिक्र किया है जो कि बेहद खास हो गया है। मन की बात में उल्लेख होते ही आम, फलों का राजा, जो गर्मी के मौसम में हमारी रसोई में प्लेट में अपना स्थान सुरक्षित रखता है, भारत में उसकी क्या स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे निर्यात में उसका क्या स्थान है और बदलते मौसम के साथ आम की पैदावार कैसे बदल रही है, ये सब बातें आज हम करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किन शब्दों में फलों के राजा आम का उल्लेख किया है मन की बात में।
1: साथियों, भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर उसकी जान है, उत्तर प्रदेश का

0: दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है।
1: तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द प्रेरणा देते हैं आम उगाने वाले किसानों को भी, साथ ही भारत में जो कृषि अनुसंधान है उसे भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम लगातार इस पैदावार को बेहतर करें और निर्यात में भी अपना स्थान सुरक्षित रखें। मैं अपने विशेषज्ञों, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान से डॉक्टर संजय कुमार सिंह। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत नमस्कार सभी।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर जयप्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान है, नर्सरी आप चलाते हैं, आम के किसान है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आप इस कार्यक्रम में आए हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधान, आम के बहुत सारे नाम लिए हैं और हमारे जो श्रोता इस रसीले फल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारा टेस्ट उन्हें इस समय आ गया होगा ये नाम सुनते ही। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजय आपसे करना चाहूंगी, भारत में आम की कुल कितनी तरह की वैरायटी है?
2: देखिए, भारत जो है विश्व में आम के एक प्रमुख उत्पादक देश है
1: जी।
2: यहाँ सबसे ज्यादा इसकी जैव विविधता पाई जाती है, करीब 1200 किस्में जो है विभिन्न प्रांतों में उगाई जा रही है और इनमें से करीब 3 दर्जन व्यवसायिक रूप से उनकी खेती की जाती है और ये केरल से लेकर जम्मू तक कम से कम 20 राज्यों में इसकी कमर्शियल खेती हो रही है। और ये एक तरह से कहें हमारा फल का जो बास्केट है उसमें हमारी देश की पहचान, आम उत्पादक हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं और करीब 24 से 28 मीट्रिक टन है डिपेंडिंग ऑन ऑफ एंड ऑन ईयर। और इसमें से करीबन हम 5% जो विश्व के जो एक्सपोर्ट करते हैं, करीबन 57 मिलियन US डॉलर का ये हमारे यहाँ से जाता है, ये ताजा फलों के रूप में जाता है और इसमें जो इसके पल्प है और भी अन्य उत्पाद हैं वो इत्यादि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे देश में एक मुख्य फल तो है ही। हमारे हर एक राज्य में, चाहे वो जगतिन क्षेत्र में हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र में हो, चाहे वेस्टर्न में हो या नॉर्थ की हो, किस्मों का बहुत बड़ा विविधीकरण पाया जाता है जो उस क्षेत्र के हिसाब से वो प्रचलित भी है, उसमें स्वाद भी बहुत अच्छी चीज है और जो कुछ अगेती हैं, कुछ पचेती हैं और स्वाद के हिसाब से वो जानी जाती हैं और बाजार में आती हैं, तब हमारे जो उपभोक्ता हैं उसका लुफ्त उठा पाते हैं। और यहाँ हमारे देश जो है, मतलब मैं कहूँ कि भारत में हम ढंग से खेती करें और अपनी किस्मों को इस तरह से उगाएं तो भारत में 6 महीने से 7 महीने तक हम ताजा फलों को ला सकते हैं और उसका लुफ्त उठा सकते हैं
1: जी। मैं डॉक्टर जयप्रकाश अब आपसे जानना चाहूंगी, आजकल बाजार में कम जगह में ज्यादा फल देने वाले जो संकर किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में, वो आ रही हैं, तो किसानों के लिए इस समय सबसे बेहतरीन किस्म कौन सी है आम की?
3: अब जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जिक्र किया
1: जी।
3: और कार्यक्रम में उन्होंने जिन किस्मों का जिक्र किया, देखें तो पूरे भारत में अलग अलग तरह की किस्में लोकप्रिय हैं। तो वैज्ञानिकों ने पिछले 50-60 वर्षों में इन किस्मों को आपस में मिलाया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लूं, नीलम का जिक्र किया, दक्षिण भारत तमिलनाडु में होती
1: जी।
3: है और दशहरी जो उत्तर भारत में एक बड़ी किस्म है, बड़े क्षेत्रों में होती है। दोनों किस्मों को मिला के आम्रपाली और मल्लिका जैसी किस्में आई
1: जी।
3: और आज की तारीख में करीब 2 लाख हेक्टेयर में दोनों किस्में फैली है और आज जब 30-40 साल हो गया इन संकर किस्मों को, आम्रपाली को देश में उपलब्ध है और मंडियों में मिल रहा है और इसके फल बड़े गुणवत्ता वाले हैं। यहाँ खास बात बताने वाली है कि जो कंज्यूमर है,

0: हमारा उपभोक्ता है वो चाहता है कि उसका जो पुराना टेस्ट है किस्मों का, चाहे वो लंगड़ा में हो, दशहरी में हो, या बॉम्बे ग्रीन में हो, नीलम में, वो बना रहे
1: जी।
0: तो वैज्ञानिकों की भी सोच यही रही है कि इन किस्मों को मिलाकर तो दोनों के अच्छे गुण आ जाएं और दो अच्छे गुण मिलके और अच्छा गुण हो जाए, कि मिठास भी बहुत अच्छी हो, आकार बड़ा हो जाए और इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। इन सारी चीजों को मिला के मल्लिका जैसी किस्म आई है। और अगले स्तर पर जो रंगीन किस्में आई हैं, जैसे पूसा अरुणिमा है, पूसा लालिमा है, अंबिका है, अरुणिका है, अर्का उदया है, अर्का सुप्रभात है, ये सब संकर किस्में हैं। और आज ये सभी किस्में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं। और इन किस्मों की खास विशेषता है कि ये रंगीन तो हैं ही, इनके अंदर जो सेल्फ लाइफ है, जैसे फल को आप तोड़ के रखते हैं तो सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि एक हफ्ते के अंदर फल की लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब किसान के यहाँ तोड़ने से लेके उपभोक्ता के प्रयोग करने तक। लेकिन अगर आप हमको निर्यात में जाना है, निर्यात के लिए जाना है, तो ऐसी किस्में चाहिए। और ये संकर किस्में उस दृष्टिकोण से उत्तम है। और ये संकर किस्में आपको 10 से 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन तक सामान्य तापक्रम पर बिना किसी रसायन के या बिना किसी अलग परिस्थिति के आराम से 12 से 15 दिन तक रुक रही हैं।
1: तो संकर किस्मों में ये सारे गुण हैं। जी, तो अवनीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, आप कितने सालों से आम की खेती कर रहे हैं?
2: लगभग 1990 से हम जो है आम की खेती कर रहे हैं
1: जी।
2: जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात में जिक्र किया कि जैसे हम लंगड़ा, चौसा, दशहरी, रामकेला और बम्बई ये सब उगाते हैं। हम परंपरागत खेती करते हैं, इससे हमें बड़ा अच्छा लाभ होता है। इसमें जो खेत की जो मिट्टी है इसका स्वास्थ्य भी बना रहता है, इसलिए हम जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वज भी इस काम को करते चले आ रहे हैं
1: जी। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, हम तरह तरह के नाम सुन रहे हैं आमों के, ये बताइए कि कैसे आम का नामकरण किया जाता है? किस्म के आधार पर या स्थान के आधार पर या भौगोलिक परिस्थिति या कोई और इसका पैमाना है?
3: जैसा कि मैंने बताया, करीब 1200 किस्में भारतवर्ष में पाई जाती हैं। और इसमें जो विभिन्नता है, उस समय के जो आपने सुना होगा, जो दरभंगा में जो लखी बाग एन अकबरी में उसका जिक्र है, जहाँ पे 1,00,000 बनाए मैंने आम के पौध लगाए गए थे जो अकबर ने लगवाया था, कि चूंकि उतना प्रचलित वो फल था उनके लिए, तो इसलिए लोकप्रिय होने के कारण वहाँ पे जो हमारी किस्में हैं ये सारी सिडलिंग ओरिजिन के हैं। और जिस तरह के जो इसमें बनता गया, इसमें प्लस्ट्री कहते हैं, चांद सिडलिंग कहते हैं, जिसमें उस समय के उसको शेप, साइज, कलर और उसके सुगंध, और जैसे इन्होंने कहा रामकेला, ये एकदम अचार बनाने वाली किस्म है। दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, हिमसागर है, ये सारी जो है टेबल पर्पस, जो खाने के लिए ताजे फल। इसी तरह कुछ पल्पिंग की है जो प्रोसेसिंग में जाती है, तोतापुरी है, बादामी है, हापुस जो अल्फांजो के नाम से जाना जाता है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए भी है, ताजे खाने के लिए भी है। और इसमें से जैसा डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ अच्छी किस्में जिनकी भंडारण क्षमता कम मिठास, खट्टा मीठा वाले आम होती हैं और भंडारण की क्षमता अच्छी होती है, ये विदेशी बाजार में लंबे समय तक ठहर सकती हैं, जहां 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन की भंडारण क्षमता होती है उसके पकने के बाद। तो इस तरह से दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं। और ऐसी ही किस्मों की अब मांग हो रही है। आप मध्य एशिया की बात करें, बिम्स्टेक कंट्री की बात करें, तो यहाँ ये जाती है जहाँ हमारा ही एशियन पॉपुलेशन खाता है इसको, लेकिन जब हम विदेशों में भेजते हैं, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन कंट्री, यूएसए हो, तो यहाँ उनके हिसाब से किस्मों को हम बढ़ाते हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ता है, और उसको जो है एक एजेंसी जो भारत से इनको निर्यात में सहयोग देती है, अपेडा का है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका जो एक्सपोर्ट को देखती है, अपेडा कहते हैं, और ये जो है फार्मर्स को रजिस्टर करती है, उनके क्लस्टर से उनके जो फल जो होते हैं अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं उनको ये बताया जाता है कि आपका फार्म रजिस्टर्ड है, आपको किस तरह की खाद, पानी, कीटनाशक इत्यादि का उपयोग करना है जिससे उसमें अंश बहुत कम मिले, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, फिर वो ग्रेड करते हैं, फिर पूरी वैल्यू चेन के लोग लग जाते हैं, जो तुड़ाई के बाद किस तरह से डिसैपिंग होती है, एक पूरी प्रोटोकॉल होती है, फिर उसके बाद उसमें एक ट्रीटमेंट की जाती है, उसको कहते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट या हॉट वाटर ट्रीटमेंट या इरेडिएशन, विभिन्न बाजारों के लिए, जैसे जापान भेजना है तो इरेडिएशन कराना पड़ेगा, जहां अमेरिका भेजना है तो वेपर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जो उन क्लस्टर में बनाई जाती है। और यहां जब फलों को हम ट्रीट कर देते हैं उसमें ये देखा जाता है कि आपके देश से जब भी उत्पाद बाहर जा रहा है तो उसमें कोई कीट या रोग ना जाए,
1: जी।
3: और इसलिए ये ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। जैसे फल मक्खी है और एक स्टोन वीविल होती है, ये उसमें प्रायः देखा गया कि अगर बाग को आप पुराना है उसमें कोई केयर नहीं करते हैं तो उसमें ये दिख जाती है। तो उसको ये ट्रीट करने के बाद इसको फिर हम इसको ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग होती है और इसकी पूरी कोल्ड चेन है, दोनों माध्यम से जाती है हमारे यहाँ से, वायु मार्ग से भी जाती है और

0: विभाग से भी, और ये सारी प्रोटोकॉल अब बना ली गई हैं, जिसको हम करीब 30 दिन से ऊपर तक ले जाके दूरस्थ बाजारों को हम भेज सकते हैं।
1: जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों को आप कैसे एजुकेट करते हैं ताकि शुरुआत में ही जो फल है उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
0: इसमें जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने हमारे शोध संस्थान हैं, पूसा संस्थान है, लखनऊ में हमारा इंस्टीट्यूट है, बैंगलोर में है, जो आमों पे कार्य करता है, क्षेत्र के हिसाब से इन्होंने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई हुई है, जिससे कि उस जगह की उसमें मृदा के हिसाब से जो उसमें गुणवत्ता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके आधार पे कितनी खाद देनी है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन होना है, कौन से फल लगने से लेकर मैच्योर होने तक की उसमें जो दी जाती है वो सारी उसमें बताई जाती है। उस तरह में अगर कोई कीट लगे या रोग लगे तो उसका रोकथाम किस तरह से करें, और इन समय की जो प्रणाली है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये प्रायः जो है अपेडा इन्हीं हमसे लेता है, गुजरात का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, रत्नागिरी का हो चाहे कृष्णगिरी है तमिलनाडु में, वहां पे है आंध्र प्रदेश के लोग हैं, सारे जगह जो है हम उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, जिससे कि कोई भी कीटनाशक या केमिकल का अंश ना आए और गुणवत्ता वाले फल तैयार हो। और उनको ये प्रशिक्षण हम लोग करते हैं, वो हमें भी बताते हैं, उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड होता है
1: जी।
0: और किसान के समूह को हम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में एक तरह के किसान हैं, जिससे कि हमें एक क्वांटिटी मिल सके जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके। छिटपुट छिटपुट हम करके बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट नहीं, जैसे कि आप जान रहे कि देश में कई मैंगो क्लस्टर हैं, मलियाबाद है, बनारस है, भागलपुर है, तो यहाँ इसी तरह मालदा आपने सुना होगा जो हमारे नॉर्थ और ईस्टर्न सेक्टर में है, तो यहाँ से काफी आम बाहर जाता है, और यहाँ उन किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद सारी उनको ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उनकी सॉइल की जांच होती है, सारी चीजें जब हो जाती हैं तब अपेटा की एजेंसी जो उनके जो एजेंट होते हैं, जो खरीदार होते हैं, वो आते हैं, उनको आधुनिक मशीन के द्वारा या लगी के द्वारा जिससे किसी चोट कम लगे फलों को तोड़ते हैं, फिर उसकी प्रक्रिया जिसमें डिसैपिंग है, उसको क्लीनिंग है, उसको डिप करना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट है, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया जो VHT वाटर ही ट्रीटमेंट जो है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, यही रिडक्शन वो कराते हैं, फिर हर एक देश के हिसाब से उनके डब्बा का जो कहते हैं कोई 2.5 किलो का होता है, कोई 5 किलो का है, कोई 6.5 किलो का है, उस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है, एक स्टैंडर्ड होता है वो करने के बाद वो फिर कोल्ड चेन, अगर हम बहुत जैसे यूरोपीय बाजार को भेजना हो, हम शिप से नहीं भेज पाएंगे, हम कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा समय होगा, सड़ जाएगा, तो वहां जो वायु मार्ग से जुड़ जाता है तो उसको हम कोल्ड चेन के माध्यम से भेजते हैं, जिससे कि वहां बाजार में पहुंचे, और 2 दिन के बाद जब 1 दिन के बाद जैसे ही रिटेल में चेन मिल जाए तो वो ऐसी अवस्था में जाए कि जिससे कि ग्राहक इसको खरीद पाए। और किसानों को मैं बताऊं, इस साल जैसा देखा गया कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा, बहुत अर्ली रेन्स आई और क्रॉप डैमेज बहुत हुआ, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि इसलिए वजह कि हमारी घरेलू मांग भी बहुत ज्यादा है, कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, किसानों को जो कीमत भी है इस साल बढ़िया मिल रहा है, लेकिन एक जो एक्सपोर्टर्स थे जो हमारे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, दुबई, ओमान, दोहा, ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, इनको जा रही थी, वहां अब इस युद्ध के कारण जो चल रहा है करंट सिचुएशन उसमें नहीं जा पा रहा है, तो हमें नए बाजार देखने होंगे।
1: अब
0: हमें हमारे नेबरिंग कंट्री है या बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, हमें अल्टरनेट मार्केट हमेशा तैयार देखना है जहां एक्सपोर्ट में हम डोमिनेट करते हैं, और सिंगापुर, हांगकांग ये बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए निकल कर आया है, और ये मैं कहूं दे पाया और उनके जो प्रयास थे उसको सफल बनाया।
1: जी, बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, और भी कई प्रश्न हैं मेरे पास आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपनी पसंद का कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
0: मैं तो कहूँगा कि हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं वो कुछ अगर गाना बता सकते हैं।
2: आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं कि देश को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, तो ये गाना आया हुआ था 80s-90s के बीच में, नाम फिल्म का है, पंकज उदास जी की आवाज में है। उस गाने से बहुत से लोग ने प्रेरणा लेके विदेशों से अपने आप को देश में शिफ्ट किया और अच्छे से यहाँ पर अपना व्यवसाय या जो भी कार्य क्षेत्र था उस क्षेत्र में आगे गए। उस गाने के बोल हैं कि चिट्ठी
1: आई है,
2: वतन की चिट्ठी आई है। ये गाना आप सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा।
1: बहुत ही प्यारा सा गाना है, हम यही गाना सुन

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और आम अब आम नहीं रहा, बहुत खास हो गया है, और साथ ही हम बहुत खास बातें आम से जुड़ी हुई जान रहे हैं। इस कार्यक्रम में अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर संजय कुमार सिंह हैं, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हमारे साथ हैं। डॉक्टर जय प्रकाश प्रधान वैज्ञानिक हैं आप, फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और हमारे साथ आम के किसान हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान भी हैं, नर्सरी भी चलाते हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम में आए हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे आम के नामकरण की, कि इतनी सारी किस्में हैं, उनका नाम किस आधार पर रखा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर जयप्रकाश, आप आम्रपाली का जिक्र कर रहे थे।
1: आम्रपाली बहुत लोगों को नगर वधु का बारे में जानकारी होगी
0: जी,
1: और ये हमारी जो पुराना इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है। आम्रपाली के पीछे की सोच थी कि आप देखें तो इसमें नीलम है, दशहरी है, तो दोनों को मिला के आम्रपाली बना
0: जी।
1: और ना तो नीलम को देखें तो दक्षिण भारत में है बिल्कुल, उसमें फल हर साल आता है
0: जी।
1: दशहरी बहुत अच्छा फल आता है, बहुत लोकप्रिय है, लेकिन समस्या क्या है वहाँ पर कि एक साल फल आता है एक साल नहीं आता है। लेकिन जब आम्रपाली आई तो ये इसमें हर साल फल आता है
0: जी।
1: आज आम्रपाली का जो पौधा है वो करीब 50 साल का है, जो पहला पौधा है।

0: हाइब्रिड 50 साल का है, पूसा कैंपस में है और उसमें अभी भी हर साल फल आता है तो सबसे अच्छी। अब रहे कि आम्रपाली क्यों रखा, उसके पीछे की सोच थी नगर वधु के बारे में भी लोग जानते हैं कि जिसे हर घर में जा सकता है, तो सोच ये थी कि ये एक ऐसा पौधा है आम का, ऐसी वैरायटी है कि ये हर घर में जाएगी, इसलिए इसको आम्रपाली रखा गया। और उसके साथ में सोच ये भी थी कि चूंकि ये ड्वार्फ है, बौनी किस्म है, तो आम का जिक्र आता था हम सोचते हैं कि 10 मीटर का होगा, 15 मीटर का होगा, इतनी जगह लेगा, लेकिन आम्रपाली का ऐसा है कि बहुत कम आकार है, तो अगर किसी के पास 2x2 मीटर की जगह है तो वो भी आम्रपाली लगाता है। और दिल्ली जैसे शहर में बहुत लोगों ने तो बड़े बड़े गमलों में लगा रखा है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं या पुराने टिन वाले हैं, 4x4 मतलब आप मान के 24 इंच के जो गमले हैं उसमें भी लोगों ने आम्रपाली लगा रखा है, और उनको अगर 8-10 फल भी मिलता है तो आनंद की अनुभूति होती है
1: जी।
0: तो उस हिसाब से नाम सामान्य रूप से नामकरण की आज की प्रक्रिया है। कई किस्में हैं जैसे हिम सागर का आपने जिक्र किया, तो चूंकि ये सागर और हिम दोनों को टच करता था इसलिए हिम सागर रखा, तो स्थान के नाम पे भी है। अब जब हम रखते हैं कि पूसा लालिमा है
1: जी,
0: तो पूसा मान लो एक हाइब्रिड है पूसा लालिमा
1: जी,
0: तो इसमें पूसा हमारा इंस्टीट्यूट का नाम से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट की जो पैदाइश हुई वो पूसा से हुई, तो पूसा ब्रांड नेम हो गया। लालिमा इसलिए है क्योंकि वो जब फल पकता है तो बिल्कुल लालिमा लिए होता है
1: जी।
0: तो वो जो उसका देखे तो करेक्टर है,
1: गुण हो गया।
0: तो जो नाम जो है, नाम बहुत कुछ उसके गुणों को प्रकट करता है। जैसे आप पूसा अरुणिमा में जाएंगे तो उसके अरुणिमा में सोल्जर पे, जैसे अरुणिमा जो है वो सूरज के पर्यायवाची के रूप में आता है, तो वहां पर एक लाली सी विकसित होती है, उसको अरुणिमा कहा गया है। इस आकार से मल्लिका का है, तो मल्लिका का फल का आकार बहुत बड़ा है, तो उसके पीछे है कि भाई ये मल्लिका है, कि सारे फलों में सबसे बड़ा है तो ये मल्लिका जैसा है। तो इस तरह से मतलब गुण का जो है बहुत कुछ योगदान है नामकरण की प्रक्रिया में। अब पुरानी किस्में आई हैं उसके पीछे भी है नाम, कि किस स्थान पे हुआ, कौन सबसे पहले उसको आगे बढ़ाया, इसके आधार पे नाम रखा जाता है। लेकिन अब हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें है कि आप जिस संस्थान से किसी किस्म को विकसित कर रहे हैं उसका नाम आएगा, और उस किस्म से जुड़ा हुआ जो गुण है वो नाम में कहीं ना कहीं प्रकट हो, और नाम सुविधाजनक भी हो, जो सामान्य जन उसको आराम से समझ पाए और ले पाए।
1: यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आमतौर पर हम सुनते हैं कि फलों, सब्जियों, फूलों के प्रचलित नाम अलग होते हैं और वैज्ञानिक नाम अलग होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
0: इसके पीछे की वजह है कि वैज्ञानिक नाम ऐसा है कि आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, अगर आपने मैंजीफोरा इंडिका बोला तो सबको समझ में आएगा कि आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मैंगो तो इंग्लिश नाम हुआ, हम आम बोलते हैं, कहीं कोई अमिया बोलता है, तो हमारे देश में ही आम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अल्फांजो किस्म है, पूरी दुनिया अल्फांजो जानती है
1: जी।
0: लेकिन अगर आप हापुस बोलेंगे, जितने बाजार में जाएंगे अगर आप, जहाँ मंडियां हैं वहां नाम लेंगे तो हापुस आम है
1: जी।
0: और हापुस कई जगह ब्रांड के रूप में चलता है, लेकिन जो लिटरेचर है, स्टैंडर्ड लिटरेचर है, वहां ये अल्फांजो है। तो जो बोटेनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम रखने की अवधारणा हुई पिछले 300 सालों में विकसित हुई, लिनियस के बाद काफी आगे बढ़ी तेजी से, तो था कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से इसको हर कोई जाने, तो आइडेंटिटी की कोई समस्या ना आए कि आप किसी और नाम से बुलाएं, अगला किसी और नाम से बुलाएं, बेफिक्र हो जाए।
1: ये भी बताएं कि बदलते हुए मौसम में ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है, ऐसे में आम का जो बौर है अगर समय से पहले वो झड़ जाता है तो फिर पैदावार कम होगी, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या वैज्ञानिक स्तर पर किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों की कैसे मदद कर रहे हैं?
0: निश्चित रूप से आजकल देखे तो भारतीय मौसम का जो फोरकास्ट है वो हर हफ्ते का आता है, 15 दिन का भी आता है, और जितने भी हमारे किसान और किसानों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रसार के हों या वैज्ञानिक हों, ये सभी इस मौसम का जो भी भविष्यवाणी है उसको फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करेगा वो आज की तारीख में काफी नुकसान में रहेगा। और इस साल ऐसा हुआ कि जब फरवरी से मार्च के हम पहले हफ्ते में आए तो तापक्रम बढ़ रहा था, जैसे ही दूसरे हफ्ते में मार्च में आए बारिश शुरू हो गई और तापक्रम कम हो गया, जिसके चलते एंथ्रेक्नोज, पाउडू मिल्ड्यू, ब्लाजम ब्लाइट, 3 तो बीमारियां आ गई। उसके बाद मैंगो हापर बढ़ गया, और बीच में एक गुम्मा रोग आता है जिसको कहते हैं फ्लोरल मालफार्म, जब फूल आता है तो फूल पूरा विकसित नहीं होता, वो छोटा छोटा होके ऐसे गुच्छा जैसे बन जाता है, तो वो गुच्छा बन जाने से उसमें नर का हिस्सा बहुत बढ़ जाता है, तो फल कम लगेंगे। आपको लगा फूल तो बहुत अच्छा है पर फल कम लगा, इधर ये 3 बीमारियां आ गई। ऐसे में हमारी सलाह हमेशा ही रहती है कि मान लीजिए जब हमको लग रहा है कि एक हफ्ते बाद बारिश का संभावना है और उसके बाद 3-4 दिन तक लगातार मौसम ऐसा ही रहेगा, तो हम पहले से ही कुछ ना कुछ छिड़काव के लिए, रासायनिक छिड़काव क्या हो सकता है उसको करते हैं। गुम्मा रोग आ गया तो जैसे ही आया है उसके इन्फ्लोरसेंस को सिकेटियर से काट कर सबको अलग करके कहीं नीचे दया के मिट्टी में दूर दबा देते हैं, नहीं तो उसके अंदर मैंगो हॉपर जो कीड़ा है वो बैठेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा।

0: उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो आगे चल के जो फल लगा भी है उसका भी इन्फ्लोरेसेंस से वो पेनिकल से रस को चूस लेगा, फल गिर जाता है। तो इस तरह की सामान्य जानकारियां अलग अलग माध्यमों से किसानों को दी भी जाती है
1: जी।
0: और हर ज्यादातर संस्थानों के अपने भी कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके भी मौसम के आधार पे प्रिडिक्शन किया जाता है। और जो MIDH है, जो भारत सरकार की स्कीम है, अलग हर राज्य में चलती है, उसके थ्रू भी अलग अलग ट्रेनिंग की जाती है कि अगर आपको इस तरह का मौसम लग रहा है तो आप इन इन केमिकल्स का छिड़काव करें। और मात्रा क्षेत्र के अनुसार बदलती है, जैसे फूल आने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो वो नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती है। हम उत्तर भारत में आएंगे, ये प्रक्रिया फरवरी मार्च की है
1: जी।
0: पूर्वी भारत में वो प्रक्रिया जनवरी और फरवरी की है। तो ये अलग अलग मौसम के अनुसार होता है, लेकिन सारे क्षेत्रों में इसके बारे में बराबर जानकारी दी जाती है
1: जी। अवनीश जी, मैं अब आपसे आपके काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहूंगी कि कितनी मेहनत लगती है पूरी फसल तैयार करने में। आपका काम कब से शुरू होता है, जब एक फसल सीजन जिसे जाता है उसमें?
2: जैसे ही आपने पूछा कि मुझसे जो ये फसल कैसे स्टार्ट होते, जैसे ही हमारे आम पक जाते हैं
1: जी,
2: उसके बाद हम जो है आम के पेड़ के चारों ओर थाला बनाते हैं। उस थाले के अंदर जो है हम उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं, जिससे वो फिर से मिट्टी से ढक देते हैं। जैसे हमने उसमें थाला बनाया, लगभग 6 इंच गहरा बनाया, और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले और उसके ऊपर फिर हमने मिट्टी से उसे ढक दिया। इसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है। बरसात से जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे पौधे की जड़ें उसे अवशोषित कर लेती है। उसके बाद हम जो है अक्टूबर नवम्बर में फिर हम जो है पौधों की खुदाई करवाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे मिट्टी में जो कीड़े होंगे वो सब जो है गर्मी के कारण, ठंड के कारण जो होते हैं वो सब मर जाते हैं, जैसे ऊपर उसको करते हैं, और जो खरपतवार है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद हमारा जो जनवरी का महीना आता है, जनवरी में बड़े देखभाल करनी पड़ती है। जैसे ही कोई नया बोर आया उस बोर को थोड़ा सा तोड़ देते हाथ से, जिससे कि जो फरवरी का महीना होगा फरवरी में उस पे अच्छी तरह से फल आ सके
1: जी।
2: इसके बाद हम जो है कीड़ों की देखभाल डेली करनी होती है फरवरी मार्च में। यहाँ कीटनाशक की हमें दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, और जितने भी होंगे हमारे जो हर्बिसाइड का भी यूज करना होता है, क्योंकि हर्बिसाइड भी जो उस समय जो बहुत ज्यादा मार्च का महीना हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा जो है बढ़ता चला जाता है, तो खरपतवार भी पौधे के नीचे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उनके हम जो है खरपतवार की खुदाई करवाते हैं और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जैसे ही फल लग जाता है, तो जब फल लगभग 50 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास हो जाता है, तो हम उस फल पर बैगिंग करते हैं। बैगिंग से ये होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ये हम प्रक्रिया करते हैं
1: जी।
2: चलता रहता है हमारा।
1: और फिर कब फसल मिलती है आपको?
2: हमें जो फसल जो लगभग जून से स्टार्ट हो जाती है, मई के लास्ट से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आजकल जो नए नए हाइब्रिड किस्में चल रही है, इनको भी हम लगा रखे हैं हमने, ये लगभग अगस्त तक चलती है हमारी। इसलिए हमारे जो मई के लास्ट से लेकर के अगस्त के महीने तक हमारा ये व्यवसाय चलता है
1: जी। पहले बारिश का या सर्दी का, गर्मी का एक अंदाजा होता था, हम मौसम का अंदाजा लगा सकते थे। आजकल मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता, और तेज बारिश होती है, आंधी भी है। ऐसे में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि समय से पहले फसल को तोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो वो बारिश में खराब हो जाएगी, तब किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीजें, मैं ये जानना चाहूंगी।
2: इसके लिए ना आजकल जो है ना एक मौसम पूर्व अनुमान का वो दिया जाता है, हर एक अलग अलग जो सेक्टर बने हुए हैं, सरकार ने बनाए हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं किसान लोग भी, उसमें मैसेज आता रहता है कि जो इस दिन बारिश होने की संभावना है या फिर जो है तूफान आएगा, तो इससे हम सचेत हो जाते हैं
1: जी।
2: हमें पता है कि जो है बारिश होनी है, तो हम अपनी फसल की आज तुड़ाई नहीं करेंगे
1: जी,
2: जिससे कि हमें नुकसान होने से बच जाता है। तो मौसम विभाग हमारे लिए काफी सहयोग करता है और हमारी फसल की सुरक्षा होती है,
1: सुरक्षा रहती है जी। और भी सवाल हैं आपसे जानना चाहूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गाना।
2: गाना तो मैं जो किसान आदमी हूँ, तो किसान भाई छोटा सा ही गाना है कि चल चमेली बाग में, वो वाला गाना सुना
1: जी। ठीक है।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश, श्री अवनीश कुमार त्यागी। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में आम की क्या भूमिका है और हमारी रसोई में जो आम पहुंचता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है किसान की। तो अवनीश जी, आपसे ही बातचीत जारी रखना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जब फसल तोड़ते हैं उसके बाद उसे जो अगला पड़ाव आपका है वो क्या होता है?
1: फसल तोड़ने के बाद हम उसके जो छटाई करते हैं, जैसे उसमें कुछ आम जो खराब निकल जाते हैं उन खराब आम को अलग रखते हैं, जो छोटे आम होते हैं उसको अलग रखते हैं, और जो फर्स्ट क्वालिटी के होते हैं उस साइज को अलग रखते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करके फिर उसे मार्केट में लेकर जाते हैं, जहाँ हमारे मार्केट में जो मंडियां बनी हुई है हम वहाँ जा करके वो ठेकेदार होते हैं, हम उनके यहाँ सप्लाई करते हैं उसको, जिससे हमारा मार्केट से में भी माल उठ जाता है।
0: जी, और ये भी जानना चाहूंगी कि क्या हमेशा एक ही कोई किस्म आप उगाते हैं या बदल बदल कर खेती करते हैं?
1: जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो है मई से लेकर के अगस्त तक ये सब प्रक्रिया चलती है हमारी, जिसमें हमें जो उत्पादन मिलता है इसमें कई सारी किस्में होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हाइब्रिड वेराइटीज है, हाइब्रिड वेराइटीज को भी हमें यूज करना होगा, क्योंकि जैसे समय बदलता चला जा रहा है जो हमारी परंपरागत जो हमारी जो फसलें थी उससे कम ज्यादा जगह घेरती है, हाइब्रिड वेराइटीज कम जगह घेरती है, इसके लिए हमें समय के अनुसार बदलना है। हम बदले और हमने हाइब्रिड वेराइटीज है पूसा की, मैंने सभी वेराइटीज लगाई हुई है, जय लखनऊ की कुछ वेराइटीज लगाई हुई है, और इनसे हमें मार्केट में अच्छा दाम मिलता है।
0: जी, मैं डॉक्टर संजय आपसे अब जानना चाहूंगी, ऑर्गेनिक तरीके जो हैं आम उत्पादन के, उनको बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमने इनसे भी सुना कि किसान जो है वो कई किस्में जो हैं वो उगाते भी हैं, नई नई तकनीक भी अपनाते हैं, लेकिन कीटनाशकों का प्रयोग भी लगातार करते रहना पड़ता है, तो किसानों के लिए क्या गाइडलाइन आपकी तरफ से होती है और क्या इसका कोई विकल्प भी है?
2: जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती, ये दोनों पद्धतियां जो इसकी संस्थान है, एक तो फरीदाबाद में जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, वो एक तरह से चिन्हित करता है कि किन क्लस्टर्स में किस तरह की पद्धति, और उसमें किसान रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन जाके, वहाँ पे एग्रीस्टैक में रजिस्टर करते हैं कि हमारे पास इतने आम की खिले, इतनी एकड़ की ये किस्म है, और वहां जब ये रजिस्टर कर जाता है, जब उसकी सर्टिफाइड हो जाती है फार्म, तब वो सारी जो ऑर्गेनिक खेती की पद्धति होती है उनके इनपुट्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग है, जीवामृत है, घनामृत है, निमास है, ब्रह्मास्त्र है, इस सारी

0: चीजें वो यूज करते हैं, और इसमें देखना ये होता है कि अगर वो ऑन फार्म कर रहा है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, वहां जितनी पत्तियां गिरती हैं उनको वो बर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, उनकी खाद बनवाता है, देसी गाय रखता है, गोमूत्र का उपयोग करते हैं, वो सारी पद्धति पूरी तरह बनाई गई है और इसमें रुझान किसानों का भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनसे केमिकल जितना कम उपयोग हो वैसे उत्पाद के विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है और वहां किसान इस तरह की पद्धतियों को अपना रहा है और इस तरह के क्लस्टर और समूह बन रहे हैं जो ऑर्गेनिक उत्पाद पे ही फोकस कर रहे हैं, चाहे वो नीम का ऑयल हो, जैसे कि उसके अलाउड खाद और उर्वरक हैं वो पढ़ते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन में भी वो एकीकृत जो विधि है IPM मॉड्यूल है उसको करते हैं और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड है उसी को यूज करते हैं जिससे कि उसमें अंश भी ना बने। यहां मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अब किसानों में जैसे भारत सरकार ने किया है GI जियोलॉजिकल इंडिकेशन वाले आम है, ये वैसे देसी किस्म है जो क्षेत्रीय में जहां सदियों से उगाए जा रहे थे और उनके एक विशेष स्वाद होता है, एक उनका कलर या आकार होता है जिसकी मांग जो है विदेशों में बहुत होती है। ऐसे उत्पाद जो है वो करीबन उसको 18 साल तक एक बार जब GI सर्टिफिकेशन हो जाता है तो ऐसे उत्पाद जब बाजारों में जाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में है तो उसको 20-30% एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है। और यहाँ जैसा कि आप जानते होंगे जैसे अल्फांसो हाफूज डॉक्टर साहब बता रहे थे, गिर केसर, बैगनपल्ली, मलियाबाद, दशहरी है, हिमसागर वेस्ट बंगाल में काफी चलता है, भागलपुर जर्दालू, बनारसी लंगड़ा है, रतौल लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का है, ये वो जगह वो डिस्ट्रिक्ट चिन्हित कहेंगे जहां से ये उत्पाद अगर निकले तो उसे GI टैग मिलेगा और करीब 18 साल तक के लिए प्रोटेक्शन मिलता है कि वहां के किसान को प्रीमियम प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में मिले। एक्सपोर्ट में भी इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये प्योर देसी किस्में होती हैं जो उस क्षेत्र से आ रही जहां से जैसे बासमती में जाना जाता है उनकी चिन्हित डिस्ट्रिक्ट होती है, जनपद उनके डिस्ट्रिक्ट चाहे राज्यों में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट उनके फिक्स रहते हैं तो वहीं से उत्पाद आते हैं, तो ऐसे किसान इसे बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में ले जाते हैं जिससे कि इसमें और बढ़िया खुशबू हो या कलर हो या स्वाद है वो मिले और विदेशी बाजार में इसकी विशेष मांग रहती है, तो इसे बढ़ाना चाहिए किसानों को। एक सवाल जो आप बता रहे थे कि क्या करें जब मौसम बदल रहा है और इस तरह की जो कभी असमय बरसात हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस समय किसानों को थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। हर एक किसान को मैं हमेशा कहता हूं कि एक किसी जैसे दशहरी पे निर्भर ना, उसे जब लगाना हो जैसे कि इन्होंने बताया हमारे साथी ने कि ये 4-5 किस्मों का समूह लगाते हैं, इसमें होता क्या है कुछ अगैती होती है, कुछ मध्य वाली होती है पकने वाली और कुछ पेशैती होती है, तो इससे जो मौसम की मार है उसे बच पाता है और उसके पास एक और विकल्प होता है कि अगर इसमें उत्पाद नहीं मिला तो बासिक की 2-3 किस्में हैं जिसमें अच्छे उत्पाद मिलेंगे
1: जी।
0: और एक और मैंने बताया कि उसका उपयोग के हिसाब से हम ताजा फल खाते हैं, कुछ हमें एक्सपोर्ट भी करना है, जब एक्सपोर्ट वाली प्राय किस्में हमने देखा कि वो बहुत लेट पकती है, जुलाई अगस्त की रहती है और उसमें जैसे रेशा कम होता है, भंडार क्षमता अच्छी होती है, मध्यम मिठास की होती है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है, अच्छा रंगीन उस पे कलर होता है, तो इस तरह की जो किस्में जो लगा रहे हैं किसान अब आगे बढ़ रहा है, उसे सिर्फ हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशी बाजार में भी हमें इसे आगे बढ़ाना है और किसानों को अपने देसी कंजप्शन के साथ अब हमारे जो आसपास के देश है उनको देने के लिए और विदेशी बड़े मार्केट है उनके लिए भी देखना है और उस तरह की हमें उत्पाद देना है जो वहाँ खरा उतरे और किसानों को अच्छा पैसा भी दे
1: जी। हमें नए बाजार भी तलाश करने हैं और जो बाजार पहले से हमारे पास हैं उनके अनुसार हमें अपनी गुणवत्ता भी बनाए रखनी है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी, निर्यात का जो मुख्य कारक है वो क्या है? हम मौसम के अनुसार अपना फल तो भेज रहे हैं लेकिन क्या जिस देश में हम भेज रहे हैं हम उस देश की भौगोलिक परिस्थिति का भी ध्यान रखते हैं, वहाँ के तापमान के अनुसार करते हैं हम निर्यात?
0: देखिए जैसा कि आम जो है ये तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हम उगा रहे हैं, हमारे को एडवांटेज मिलता है कि हमारा आम बहुत मीठा होता है, खट्टा मीठा होगा, कलर अलग होंगे, छोटा बड़ा साइज होगा
1: जी।
0: लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है, रतौल है हमारे यहाँ से जाता है, लंगड़ा चौसा दशहरी केसर है, बैगनपल्ली है, तोतापरी है, ये इत्यादि जाती हैं, इन सभी में देखा गया है कि थोड़ी इसमें भंडारण क्षमता इनकी अच्छी होती है, पहला मांग वो है। दूसरा है ये वहाँ किस तरह के पॉपुलेशन रहती है, जहाँ एशियन पॉपुलेशन है वो मीठा आम खाना चाहते हैं, जो विदेशी लोग हैं यूरोपीय लोग हैं या जापानी या अमेरिकन हैं वो मध्यम मिठास चाहिए, वो खटास भी चाहिए, तो इस तरह के जो डिमांड है ये इस तरह के जो क्लस्टर बनाए जाते हैं जहाँ इस तरह के किस्मों को उगाना है जो वहां के मांग को मीट कर सके, डिमांड को। तो इसी तरह से जो पूसा या IHR बैंगलोर या CISH लखनऊ में है जहाँ पे आम की वैरायटी, जो नेक्स्ट जनरेशन आम है जो एक्सपोर्ट में भी हमारे को अच्छा पैसा दे। देसी किस्मों को तो हम खाएंगे
1: जी।

0: हाइब्रिड भी आएंगे जो सघन बागवानी में हेल्प करें, उसको ड्रिप पे ले जाएं, उसको फर्टिगेशन पे रखें, मल्चिंग करें, बैगिंग करें इत्यादि से जो पूरी प्रोटोकॉल जो है सेफ और पेस्टिसाइड मुक्त उत्पादन होगा तो आपको अच्छा वो कीमत भी देगा और किसान के पूरे वैल्यू चेन में जो लोग हैं, जो उत्पादक है, जो भंडारण करता है, एग्रीगेशन करता है, जो कोल्ड चेन से ले जाता है, रिटेल में ले जाता है, एक्सपोर्ट करता है, ये सारे जो लोग जुड़े हैं उन सभी को तभी अच्छा मतलब कीमत मिलेगा जब हम सारे लोग एक साथ काम करें और एक दो वर्ष पहले से ये हो जाता है कि यहाँ इस साल का उत्पाद आएगा, हम इन बाजारों को तलाशेंगे या उनको देखेंगे, इस तरह से होता है।
1: जी, अब बहुत ही रोचक बातचीत चल रही है और सच में हमने अपनी प्लेट में सजे हुए आम को कभी भी इतने नजदीक से नहीं जाना जितना आज आप सबकी बातचीत के बाद हम समझ पाएंगे। ये बातचीत जारी रखेंगे, उससे पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना आपसे पूछना चाहूंगी।
0: मैं तो चाहूंगा मेरा देश रंगीला जो ये गीत है
1: जी
0: वो जरूर बजवाएं और हमारे श्रोताओं को सुनाएं जिन्हें उन्हें भी अच्छा लगे।
1: जी बिल्कुल।

गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की। तो डॉक्टर जयप्रकाश, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हमारा प्रोसेसिंग उद्योग जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आम की फसल पूरी तरह पककर तैयार नहीं होती,

0: कोरा कहते हैं या टिकोला कहते हैं, जब मुश्किल से 15 ग्राम का होता, अगर वो गिरता है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। उससे भी मैंजिफेरिन नामक रसायन एक होता है उसके अंदर में, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसका भी एक्सट्रैक्शन हो सकता है। उसको सुखा के अमचूर बनता है, उसके बाद जब आम गिरता तो उसका भी अमचूर बनता था परंपरागत रूप से। गांव में पहले घर में बड़ी माताएं बहनें बनाती थी, आज भी बहुत लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसी को अब हम व्यवसाय के रूप में लेके आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपका आम बड़ा होगा, तो आम जब आपका हो गया 60 से 70 दिन का 80 दिन का, जब उसमें गुठली बन जाती है, तब अवस्था होती है अचार की। जैसे पन्ना बहुत लोग पीते हैं, जब गर्मी बढ़ती है तो आम पन्ना बहुत एक लोकप्रिय कच्चे आम का ही होता है, और उसी कच्चे आम से आगे आप जाएंगे अचार पे जाएंगे। लेकिन जैसे तोतापरी किस्म देखें, मल्लिका देखें, इन किस्मों का काफी प्रयोग, खास करके तोतापरी का प्रोसेसिंग में बहुत उपयोग किया था। जो पल्पिंग इंडस्ट्री है वो हमारा सबसे बड़ा स्रोत है कि जो हमारे किसानों के फल हैं उनको ऑब्जर्व करने का, और वो इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। और उस दिशा में भी किस्में विकसित की जा रही है और किस्में आई है। जैसे मल्लिका का जिक्र किया, मल्लिका आप फ्रेश भी खा सकते हो और पल्प रिकवरी उसकी बहुत अच्छी है, 75 से 80% तक की पल्प रिकवरी, उसकी गुठली बहुत पतली सी होती है। तोतापरी में भी यही खासियत है, पैदावार अच्छी है और पल्प रिकवरी अच्छी है, तो वहां पर प्रयोग है। एक बार जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आप जैम कैसे बना सकते हैं और मिक्स्ड फ्रूट मिक्स जैम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। जितना हम फ्रेश आम का प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा कहीं हम प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। पिछले कुछ सालों में समस्या आई थी खास करके आंध्रा में, क्योंकि फल बहुत आ गए थे और पल्पिंग इंडस्ट्री के पास स्टोर करने की क्षमता नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा रेट कम मिला था। लेकिन इस साल ये हालत काफी बेहतर है, क्योंकि फसल थोड़ी सी कमजोर है, जिसके चलते ये सारे फलों का दाम मिल रहा और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छे से ड्राइव कर रही है। और हमें व्यवसायिक रूप से तो करना ही एक समूह के रूप में, एक व्यक्ति और परिवार के रूप में भी आम का कुछ हिस्सा अपने प्रयोग में, चाहे अचार के रूप में करें, खटाई के रूप में करें, खुद भी बनाएं। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ ना कुछ लागत किसान को मिलेगा, नहीं तो आंधी आई तमाम फल गिर गए, अब वो अचार में नहीं जा सकता है, किसी और काम में नहीं जा सकता है। लेकिन उसको काट के सुखा के उसका खटाई बन सकता है, उसका अमचूर बन सकता है, अलग अलग मसालों में प्रयोग हो सकता है। तो इसको हम एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है गांव के रूप में, कुछ महिलाओं का समूह मिलाकर इस स्तर पे भी काम किया जा रहा है, लोग करते हैं और इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: जी, यानी आम को भी अगर हम अलग अलग स्वरूप में इस्तेमाल करेंगे तब भी उसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा,
0: निश्चित रूप।
1: जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि वैज्ञानिकों की लैब होती है उसमें जो रिसर्च चल रही होती है और किसान के खेत के बीच बहुत अंतर होता है, लेकिन आप ये जो दूरी है इसे कैसे कम रखते हैं, कैसे किसानों से सीधा संपर्क करते हैं या अपनी समस्याएं लेकर वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे समाधान उन्हें मिल सकता है?
0: तीन चार रास्ते हैं, तीनों चारों पे काम होता है, पैरेलल रास्ते हैं। जैसे हमारी कोई नई किस्म आई, नई किस्म जब भी आती है तो हम उसके लिए अपनी फील्ड पर, मान लीजिए हमारा कोई आम की नई किस्म है, हमने मैंगो फील्ड डे बनाया, जब फील्ड डे बनाते हैं तो उसमें हम किसानों को भी बुलाते हैं, उस किस्म के बारे में बताते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर एक्सपोर्ट करने लायक वैरायटी तो उनको भी बुलाते हैं। जो नर्सरी का योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े स्तर पर पौधों का जो निर्माण और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है वो नर्सरी के माध्यम से होती है, हम उनको भी बुलाते हैं ताकि सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आए और वहां से जो जिसके हिस्से का काम हो वो पा जाए। इसके अलावा अलग अलग निजी क्षेत्रों को हम लाइसेंस भी देते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं उनको नई किस्में उपलब्ध कराते हैं, और बीच बीच में हमारे प्रशिक्षण चलते हैं। प्रशिक्षण डायरेक्ट किसानों का भी होता है और एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग होता है, जैसे जो राज्य सरकार के स्तर पर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट किसानों से जुड़े हैं, वो आते हैं हमारे स्तर पर, हम उनको ट्रेन करते हैं और वो अपने स्तर पर बहुत बड़े समूह को फिर ट्रेनिंग दे पाते हैं। और इन टेक्नोलॉजी को और पौधों को, दोनों को हम किसानों के स्तर तक ले जाते हैं। माध्यम उसमें आपको कृषि विज्ञान केंद्र भी रहता है, जो राज्य सरकार की प्रसार सेवाएं हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी होता है। और कुछ किसान बहुत जागरूक होते हैं, वो स्वयं भी काफी सक्रिय होते हैं और उनके माध्यम से उनको काफी मदद मिलती है, क्योंकि कोई नई वैरायटी आप कहो कि आप 10 एकड़ लगा लो, कोई नहीं लगाता, मगर किसी एक किसान ने 100 पौधा लगाया, उसको देख के हो सकता है कि 5,000-10,000 किसान प्रभावित हो जाते हैं और फिर उस मॉडल को अपनाते हैं।
1: जी, मैं अब अवनीश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, देश भर में जब आम का मौसम होता है तब मैंगो फेस्टिवल होते हैं, आम महोत्सव होते हैं, अलग अलग आयोजन होते हैं, उनमें एक साथ बहुत सारी किस्में हमें चखने को मिलती हैं। एक बात मैं अक्सर बुजुर्गों से ये सुनती हूँ कि फल में अब पहले जैसी खुशबू नहीं रही, मिठास तो कुछ कुछ फलों में ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि पहले जैसी महक नहीं है, तो आप इसकी वजह क्या क्या है, क्या कहेंगे, क्या फल पहले से खराब हो गया है या गुणवत्ता बदली है या फिर अलग

0: किस्म है इसलिए।
1: मैम देखिए, जो है पौधा तो वही है जो अब से जो है 200 साल पहले 300 साल पहले थे, जो पौधे आज भी पौधे वही हैं, लेकिन जो हमारा वातावरण में चेंज आ रहा है, इस
0: जी
1: वातावरण में चेंज के कारण हमारे जो छोटे छोटे, पहले देखा होगा जो पशु ये पक्षी हुआ करते थे, छोटे छोटे कीड़े हुआ करते थे, तो उनको पक्षियां खा जाते थे,
0: जी
1: उससे फल को नुकसान नहीं होता था। अब पक्षी भी बहुत कम हो गए हैं, हम अलग अलग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उस पेस्टिसाइड के कारण जो छोटा सा इंसेक्ट होगा उस पेस्टिसाइड के यूज से वो मरा, उसे पक्षी खाता है तो पक्षी को भी वह बीमारी हो जाती है। इस कारण हमारे अलग अलग जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं ये लगातार हम दवाओं का प्रयोग करते हैं और इससे हमारे फलों की गुणवत्ता में भी कमी आई है,
0: कमी आती है।
1: इनका मेन कारण है कि हम जो है पेस्टिसाइड यूज करते ज्यादा,
0: जी वो करने पड़ते हैं,
1: वो करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो फिर जो है फल पैदा नहीं होंगे।
0: हम इस तरह की शिकायतें भी आमतौर पर सुनते हैं कि आम खाने से चेहरे पर कहीं दाना हो गया, या बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले आम को पानी में भिगो कर रखिए, नहीं तो जो गर्मी होगी वो आपको नुकसान करेगी। तो सही तरीका क्या है आम को खाने का, ये आप बताएं।
1: सही तरीका है कि जब पेड़ की जो डाल का जो आम होगा वो खाना चाहिए, लेकिन हर सभी के पास जो है बाग नहीं है, हर सभी के पास ये नहीं है। अगर पाल का भी आम है तो उसे हम लगभग 4 या 5 घंटे तक पानी में भिगोएं, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी से निकालने के बाद 1 घंटे बाद उसको खाया जाए तो उसमें टेस्ट आ जाता है।
0: जी, और वो उसके ऊपर अगर कुछ छिड़काव किया गया है, कुछ है, वो भी धुल जाएगा,
1: वो भी सब धुल जाता है।
0: जी डॉक्टर संजय सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: जैसा कि अभी पूरी चर्चा में बात चल रही थी कि अगर आम को अगर बढ़ाना है और ये हमारी देश की पहचान है, तो किसानों को वैज्ञानिक पद्धति, चाहे वो जैविक करे, चाहे नेचुरल फार्मिंग करे, चाहे वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर करे,
0: जी
2: अब तो जैसे जापानी लोग हैं वो तो रोटेटेड कल्टीवेशन के अंदर ले गए कि जिसे बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन में जो आम को जब चाहे साल के उसमें पैदा कर लेते हैं, तो किसी को भी अगर अपनाते हैं तो वहाँ साइंस लेड जो हम कहते हैं तकनीक है, जो प्रोवाइड है, जो हमारे जो रिसर्च संस्थान है वो दे रहे हैं, चाहे वैज्ञानिक सलाह पे कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि वो वैज्ञानिक सलाह के साथ और हमें सम्मिलित होना पड़ेगा, एक साथ समूह बनाना पड़ेगा। छिटपुट छिटपुट जो है वो आप अपने घर के लिए, साथ के बाजार के लिए कर सकते हैं, लेकिन उससे लेकर आप बड़ा कुछ नहीं सोच सकते। तीसरी बात यह है कि जब FPO बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं या प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो किसानों को भी चाहे वो खाद खरीदे, चाहे कीटनाशक खरीदे, चाहे ऑर्गेनिक में करें, इनपुट लेने में भी कीमत में बहुत कमी मिलती है कि बल्क परचेस करते हैं, और जब उसके विपणन में भी जाते हैं, जब उसको तोड़ने के बाद आप मार्केट में बेचते हैं किसी भी समूह को, चाहे रिटेल चेन वाले हों, चाहे वो बड़े ट्रेडर्स हों, तो वहां भी कीमतों पे आपका से रहता है कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत हद तक देखा गया है अंगूर के व्यापार में या उसके उत्पादन में कि वहाँ के किसान जो हैं बहुत संगठित हैं और इस तरह से बढ़ा। तीसरा चीज है कि जो आज हमारे पास युवा बहुत हैं, IT के बच्चे हैं, MBA के बच्चे हैं, बाहर किस तरह भेजना है, उसके प्रोसेसिंग में क्या करनी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से हम रिटेल चेन में बहुत लंबे समय तक आम की उपलब्धता करें, तो हम इस तरह से इस पूरे आम के जो व्यवसाय है, जो उसके उत्पादन से लेकर निर्यात तक, ये पूरी चेन को दुरुस्त कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। और समय के साथ हर एक को मैं करता हूँ कि प्रशिक्षण लेनी चाहिए
0: जी।
2: और जाके देखना भी चाहिए जैसे विश्व के अन्य देशों में किस तरह से खेती की जाती है, और उस तरह की तब्दीली हमें भी लाना पड़ेगा। और जैविक और हमारा जो प्राकृतिक खेती है, ये तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि हमारे देश को मिला कि कुछ राज्यों में जहाँ दूर दूरस्थ हमारे जो जनपद है वहां तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होते, तो वहां के उत्पाद प्राय बाजार में अच्छी कीमतें देती हैं, और वहाँ किसान को भी और हमारे कृषक समूह को भी लगना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी उत्पाद हैं उसके जो है मैं कहूँ कि एक तरह से सारे स्टेक होल्डर एक साथ आए, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग उसके इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग उसके निर्यात और कोल्ड चेन से जुड़े हैं या प्रसंस्करण से जुड़े हैं, तब जाके ये हमारा आम जो है विश्वव्यापी फल तो है ही है, सभी जगह मांग भी है, लेकिन हम उसके मानकों पे खरे उतरेंगे और ये इंडस्ट्री को और इसके सारे जुड़े जो लोग हैं उनको फायदा होगा।
0: जी चलते चलते एक और सवाल मेरा आपसे, अंतिम सवाल, आम उत्पादन में और जो अनुसंधान हो रहे हैं उसमें AI और ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है क्या?
2: एक बात हो रही है जैसे कि हम जब उत्पादन से करते, यहाँ पे अब एक सुना होगा आपने क्लीन प्लान प्रोग्राम जो भारत सरकार ने किया है कि हमारी नर्सरियां एक्रेडिटेड हो, जो हमारे देश में पौध तैयार हो उसकी ट्रेसिबिलिटी रहे, आपने दशहरी लगाए और पता चला कुछ दिन के बाद वो लंगड़ा निकल गया या कोई और किस्म निकल गई, बीजू निकल गया, इस तरह की बात ना हो। तो इसमें नर्सरी से लेकर और जब हम उत्पादन कर रहे हैं उनमें कौन सी जो उसमें जब भी हम उसमें कोई भी शस्य क्रिया करते हैं या खाद डालें या जो कीट या रोग प्रबंधन करें तो उसकी सारी प्रणाली रिकॉर्डिंग होती है। ट्रेसिबिलिटी का एक मुख्य माध्यम है। फिर उत्पाद

0: आपने देखा होगा कि अब जितने भी डब्बा बंद हमारे उत्पाद आ रहे हैं, चाहे फल हो सब्जी हो, उस पे आप बारकोडिंग देख रहे होंगे, क्यूआर कोड देख रहे होंगे। ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि उपभोक्ता ये जानना चाहता है कि उत्पाद जो है वो किस तरह तैयार किया गया, किन प्रक्रियाओं से गुजरा है और कैसे उसके पास पहुंचा है। तो उसे भी अब एआई और ये जो है ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग, अब ये सारी जो है सेंसर बेस्ड होने लगी हैं। किसी में अगर कोई अवगुण है या कुछ में कुछ रोग लगा हुआ है या उसमें फल मक्खी का इन्फेक्शन है, ये अब इमेजिंग के द्वारा सेंस करके हम निकाल देते हैं
1: जी।
0: और सेंसर भी इस तरह से आ गए हैं कि फल अगर खराब हो रहा है, अगर हमने कहीं दूरस्थ भेजा हुआ है, तो ये उसमें कलर चेंज है, बायोसेंसर्स कहते हैं, वो उसको देखने के बाद ही बोल सकते हैं नहीं ये अब खाने योग्य नहीं, इसको आप फेंक सकते हैं। तो जो भी एआई है, जो हमारा जो सरकार डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इस तरह से सारी चीजें फार्म से लेकर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तक हम डिजिटाइज करके इस पूरे टेक्निक ड्रिवन इस पूरे इंडस्ट्री को कर सकते हैं। और ये क्षमता है और हमारे कई युवा जो हैं इसमें सारे स्पेशलाइज्ड हैं और सभी को एक साथ आना है। मैं सभी को कृषक बनने को नहीं कहता हूँ, लेकिन कृषक बनने के साथ इस पूरे वैल्यू चेन में आप स्टेक होल्डर बनिए और एक दूसरे को हेल्प करिए और सहयोग करिए और ये इंडस्ट्री फलेगा फूलेगा
1: जी। और ज्यादा से ज्यादा युवा अगर जुड़ेंगे नई तकनीक के साथ तो इसमें भी आधुनिकता आएगी।
0: बिल्कुल
1: जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं और हमने इस इंडस्ट्री को भी अच्छे से जाना आज आपके माध्यम से। डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आप आए, और श्री अवनीश कुमार त्यागी, नर्सरी आप चलाते हैं और आम के किसान हैं गाजियाबाद से आप हमारे बीच आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए
2: धन्यवाद।
1: तो अपने किसान भाइयों को तो हम इतना ही कहेंगे कि आप नई नई तकनीक अपनाइए, जो सुविधाएं सरकार विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, विभिन्न परिषदों के माध्यम से आपको देना चाहती है, उन सुविधाओं का लाभ उठाइए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, साथ ही जो युवा पीढ़ी है उसका भी साथ लीजिए, तो आपको आम के आम, गुठलियों के दाम मिलते रहेंगे और दांत खट्टे नहीं होंगे इतनी मेहनत करने के बाद। तो हम यही कामना करते हैं कि जो फलों का राजा आम है वो दुनिया में भी भारत का नाम चमकाता रहे। इसी कामना के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से अनुमति लेती हूँ। कार्यक्रम संयोजन था शिव नंदन लाल का और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स और शाहनवाज खान। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: ಇದುವರೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 111 ಕೇಳಿದಿರಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರ
5: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ನಮ್ಮ ನಿಲಯದಿಂದ

0: माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा।

0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहिली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकुली पीठा और मशहूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है।

स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर। वो इंग्लिश।

0: किशोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति ये भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। सर, स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
2: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर आप बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
1: जी।
2: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषय बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
1: जी।
2: और तीसरा, विज्ञान में

0: जहाँ ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
1: जी।
0: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है, नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारे स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में 3-4 या 2 या 3 दिन का कैंप था मुंबई में
1: जी।
0: तो हमारे युवा लगभग 30-40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
1: जी,
0: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
1: जी,
0: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो किस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने AI चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइम लाइन। हमारे 95-97% जहाँ पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहाँ हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, AI ड्रिवन भी होगा, और कोई ह्यूमन बात भी करा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई, और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा, ये मात्राएं किस तरह से दिखाती है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है।
0: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
1: बिल्कुल
0: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें 3 स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O ब्यूट्रोस ऑक्साइड, लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम-239 इस तरह से
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है, और उस जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसको यूरेनियम-239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़े, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी, और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे। तो हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है, तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम-233 जो एक्चुअली नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया, यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करें। जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ियों तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था। और जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया। और

0: की धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी हैं। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप हो रहा है स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इंटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से आता है, बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा क्रिएटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहां तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है। वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जा रहा है, दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे जो टीका में 1950 के दशक में यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 वर्टिकल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड, लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
1: जी।
0: यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पे ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट आते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने Bio-E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है Bio-E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रिसाइकलिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें अभी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है, हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नीम एंड पिग डिजीज है, इस तरह के।

0: इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई टूट ना जाए, कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में, उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस का हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसकी इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग कहा जाता था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से हटा था। यहाँ पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा, चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाएगी।
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: निश्चय, अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टुवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है, और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट, लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशंस के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीव में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है, हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल तो है ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर, तो ये सारा वॉरफेयर उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यही शोध किया, यही पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें गा उठा कर देखता है बड़ी तवक्को के

0: साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड. तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति.
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा में बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें
0: तो? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी,
0: जो अभी स्नो लर्न ऑप्शन इससे नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिट्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है. इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बैठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर. एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है. ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है. एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है. नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाके छतरी लेके जाएंगे ना जाएं. और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है. इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकते हैं, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए. तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके. और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साखड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है.
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर भेजा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, जिस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग है, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है. ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं. हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है. हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल. और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं. जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है तो खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्चू, उससे भी बिजली याद होती है. तो समुन्द्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा, वहाँ 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगा.
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता. वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है. भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्र तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके. हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर, जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर. तो ये सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर, जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हम 2047 से पहले ही उत्तर पर पहुंच जाएंगे, कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें.
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ले. तो ये भारत

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य

0: अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: Trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइन थीम था वो यही था कि जिस भी

0: ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टॉक सीरी नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक

0: जाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today.

0: राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्रीराम का गायन। आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वी एस पी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's broadcast of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a vocal recital by Sri J.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आखेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वही संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर है और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। He is known for his expressive and dynamic style of singing. He hails from a distinguished musical family. Sriram was initiated into music by his mother, Srimati J. Chidrupa Lakshmi. Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal

0: concerts and nama sankirtanas. He performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
1: Shri Ji Shri Ram apne gayan ka aarambh बालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है.
0: श्री जय श्री राम बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ बालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर इन द राग ललिता सेट टू आदिताल. ताल

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है.
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जी श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है.
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल.

0: गीता तन्यावर्तनम जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया.
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई विद्वान पेरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाई श्री एम चंद्रकांत.
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है. आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्र.

0: चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे श्री राम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा। He was accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on Ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.